हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

इन गलियों में बच के रहना नटखट प्रेम कुमारी, इन गलियों में बच के रहना नटखट प्रेम कुमारी, इस बस्ती में रहते हैं सबके सब प्रेम पुजारी। चटक मटक के मत चलियो, कोई नमक लगा कर चख लेगा, चटकीली चटक जवानी को झटके अखियन में रख लेगा।

किए खंजर चलवाए कितने हिटलर आए, फिल्म किए खंजर चलवाए कितने हिटलर आए, पर इश्क में पागल दीवानों को वो भी रोक न पाए। लहू दिलों का जब चाहत के रंगों में ढलता है, तब तक इस दुनिया में सुंदर ताजमहल बनता है।

0: भोला भाला भीमा बम भोले का पुजारी किसी नारी से नजर न मिलाए। नारी बड़ी प्यारी पर दिल की बीमारी काहे रोग कोई दिल को लगाए।
1: गोरी है कलाई।

0: सजा तू मेरा यहाँ काहे मेरे गले पड़ जाए। चूड़ी पहनाने वाले और भी है छोरे यहाँ भी माँ तेरे झांसे में न आए।
1: गोरी है कलाई।

ही पड़ा ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान, मोहब्बत

के रहना नटखट प्रेम कुमारी। इन गलियों में बच के रहना नटखट प्रेम कुमारी। इस बस्ती में रहते हैं सबके सब प्रेम पुजारी। चटक मटक के मत चलियो, कोई नमक लगा कर चख लेगा। चटकीली चटक जवानी को झटके अखियन में रख लेगा।

एक हंगर चलवाए कितने हिटलर आए। एक हंजर चलवाए कितने हिटलर आए, पर इश्क में पागल दीवानों को वो भी रोक न पाए। लहू दिलों का जब चाहत के रंगों में ढलता है, तब तक इस दुनिया में सुंदर ताजमहल बनता है।

0: भोला भाला भीमा बम भोले का पुजारी किसी नारी से नजर न मिलाए। नारी बड़ी प्यारी पर दिल की बीमारी काहे रोग कोई दिल को लगाए।
1: गोरी है कलाई

0: जात काट का है रास्ता तू मेरा यहाँ का है मेरे गले पड़ जाए। चूड़ी पहनाने वाले और भी है छोरे यहाँ भी माँ तेरे झांसे में न आए।
1: गोरी है कलाई।

गोरी है कलाइया मिला तू तुझे हरी हरी चूड़िया, गोरी है कलाइया मिला तू तुझे हरी हरी चूड़िया।

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।